0: ini ketongna dan ami khomla khile indori kotate je
1: फिर उच्चे माँ झोलों के पुल

0: वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सोई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लगी एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम टाइम चेक ये बेला बिहान को 10 बजे

0: तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड
1: सुने खबर जीवन साथी असल पाकी छौरे खुशी छौरे सुखी छौरे
2: म गीतकार संगीतकार राजकुमार बगर तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्य पश्चिम 91.4 मेगाहर्ज।

0: つ青なかすが戻さないパンへ出かないな。黒なリパンさんがサンドをたがれた。黒なリパンさんがサンドをたがれた。なさいパンディスキョーのパルドラヒカ。
1: তোমাৰ হয় কিন্তু মই ঠিকে বিলাম হাজিলে ধীৰে ধীৰে ধন্যবাদ চাহিছো আপুনি ছুটি নপৰিছে আপুনি চাওঁ চাতিলাই চমজি নচাই
0: সম্ঝন পর্দা সর্বপ্রথম তো হাজুরলাই টেকনিশিয়ান মারানো ভাইকো টেকনিশিয়ান সরলাই রেডিও মাত্রে বসুনকো ওল ইউনিটলাই সাথর ভন্ন পর্দা গরেশিম ওলি তাই রাধা আচারি দিদি রুদ্র বাহাদুর সন্ধ্যায় গম্ভীর ভক্তি তাই তপেন্দ্র দাই তেসুদরি নারায়ণী বসনে প্রতীক্ষা চৌধুরী কল্পনা সোনার তেসুদরি লবিশাল বিকাশ জগত চৌধুরী কৃষ্ণ চৌধুরী সম্পূর্ণ সবাই নাম ছুটেব সাথীহরলাই পনি বিসেকো ছ
1: सहभागिता सुनिराख्नुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब वाल तपाईँको छ 82 85 60 800 टेलिफोन नम्बर चाहिँ डायल गरेर आउन सक्नुहुनेछ। गीतको जुन मुक्त खुवाना सायरी क्यारीको सुरुवात भने तपाईँलाई चाहिँ आजको श्रृंखलामा कुन प्रतिभा सुनाउन मनपर्छ त्यो प्रतिभा चाहिँ सुनाउन सक्नुहुनेछ। मलाई टेक्निसियनबाट शालिक राम चौधरीले साथ दिइराख्नु भएको छ भने यसरी आवाजबाट बोलिरहेको छु म कार्यक्रम प्रस्तोता अमृता डागी। बाँकी छ तपाईँहरूको छै हजुरहरू पनि जोडिनु चाहिँ नबिर्सिनु होला। आफ्नो काम छ कामका सँगसँगै हामीलाई पनि सुन्नुहुन्छ। यदि सम्भव छ तपाईँलाई पनि आफ्नो प्रतिभा सुनाउन मनपर्छ भने जोडिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो फ्रिक्वेन्सीबाट 91.4 MHz मार्फत लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका क्षेत्रहरूमा सुनिराख्नु भएको छ भने इन्टरनेटबाट www.dmp.org लगइन गरेर पनि संसारभरिबाट एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो पात्र र मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ है। सो यति बेला मिठो सांगीतिक आवाज तपाईँहरूको माझमा हामी प्रस्तुत गर्छौ। त्यस पछाडि आउनु नै छ 82 85 60 800 को टेलिफोन नम्बर डायल गर्दै गर्नुहोस्।

राम राम सन्जेक 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिकराम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। समुदायमा रहक महिला समूह तथा विपन्न लक्षित थारू महिलाको नक्से आय आर्जन तथा आर्थिक विकासको विषयमा तुलसीपुरमा अन्तर्क्रिया कर्किल्बा व्यवसायिक संस्थाका आयोजना तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका सहकार्य तथा डोम च्यारिटी तथा फ्यामिली फाउण्डेशनको सहयोगमा कार्यक्रम कर्किलक हो। विपन्न महिला तथा महिला समूह आय आर्जन से जोड़कन महिलाका आर्थिक विकासमा टेवा पुगिन उद्देश्य से कार्यक्रम कर्किलक बेसको कार्यक्रम निर्देशक पिंकी डांगी से बटवा रखल। वहां से बेस से धीर वर्ष से अल्पसंख्यक विपन्न थारू महिला कनक क्षेत्र में काम करती को समूहगत रूप में फे काम करलक जानकारी करी थी। यी वर्ष में फे विभिन्न माध्यम से महिला कनकला आर्थिक उपार्जन तथा आय आर्जन में जोड़ना बटवा रखल। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अंतर्गत का बस्ती में रलक महिला समूह का प्रतिनिधियों को नकला कार्यक्रम सहभागी बनाकर विभिन्न क्षेत्र और निकाय से अलग योजना और कार्यान्वयन को अवधारणा के विषय में जानकारी करागिल रह। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली बहादुर चौधरी से महिलाओं को आय आर्जन से जोड़ना ज्वारा पर्ना बटवा रखल। आर्थिक समृद्धि के लाभ महिला से कमाई जो पर्ना कति आपन सीप व्यवसाय कृषि संघ क्षेत्र से जोड़ गिलक महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण में लैजाई पर्ना बटवाल रह। महिला में आर्थिक विकास हुईल सिकल समाज रूपांतरण होना उहां का काहिर लहिन। महिलाओं को नक्शे घर में जो बैसकन 20-30 हजार रूपया कमिना वातावरण बन पर्ना ऊ वातावरण निर्माण कर प्रदेश सरकार समेत लागलबा चौधरी का रखल। यी वर्ष यी क्षेत्र में 10 हजार महिलाओं को नक्ला आय आर्जन में जोड़ना फेकन कार्यक्रम को व्यवस्था करगिलबा। महिला में आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक रलक कति अपना को नक्शे महिला केन्द्रित आय आर्जन कार्यक्रम में पहल करलक बटवा रखल। दाङमा एक वर्षको अवधिमा वन पैदावार से 10 करोड़ रूपया से बढ़ी आमदानी हो रहल। डिवीजन वन कार्यालय कोराही दाङका अनुसार आर्थिक वर्ष 2082-83 वन पैदावार संकलन से 10,61,13,224 रूपया कठुवा ऊ काठी उत्पादन हुईलको। डिवीजन वन कार्यालय कोराहीमा प्राविधिक अधिकृत दिनेश डांगी अनुसार वन संवर्धन प्रणाली लागू हुईलक 48 सामुदायिक वन से 1,90,747.21 क्यूफिट काठ ओ 472.47 चट्टा दाउरा उत्पादन हो रहल। वन पैदावार संकलन का सहमति लेखन 98 वन समूह मध्य 50 वन समूह से उत्पादन हुईल कठुआ ओ काठी 10,61,13,224 रूपया आमदानी करलबाट। प्राविधिक अधिकृत डांगी का अनुसार कठुआ उत्पादन से 9,87,33,912 रूपया ओ काठी 73,79,312 रूपया आमदानी हो रहल। कठुआ उत्पादन से हुईल आमदानी मध्य 2,60,67,248 रूपया प्रदेश संचित कोष में जमा हुईल को बाकी रकम वन समूह को खाता में जमा हुईल बटवा रख। कठुआ उत्पादन से हुईल आमदानी का 25% प्रदेश संचित कोष में जमा कर पर्ना कानूनी व्यवस्था हल्बा। बाकी रकम वन समूह का खाता में हुईना ओ उक्त रकम वन संरक्षण संग सामाजिक कार्य में लगिना करलबाट। दाङमा हालसम्म 85% क्षेत्र में धान रोपाई सम्पन्न हो रहल। जिला में 28,385 हेक्टर क्षेत्रफल अर्थात 85% क्षेत्र में धान रोपाई सम्पन्न हुईल। कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ का प्रमुख नवराज भण्डारी से जानकारी दिलकल। वहां का अनुसार देखुरी क्षेत्र का अधिकांश स्थान में धान रोपाई ओरा रहल तर दाङ उत्पत्य तथा वर्षा का भर में खेती हुईना कुछ क्षेत्र में आही रोपाई जारी रहल बा। कोराही तुलसीपुर का दक्षिणी क्षेत्र दंगेश्वरम शांतिनगर बबई ओ बंगला छोली गांवपालिका का वर्षा में निर्भर किसान से आही रोपाई करती रलक वहां का काही बाटिन। वहां का अनुसार मौसम अनुकूल रलस से आगामी साउन 10 गतेसम जिलाभर धान रोपाई संपन्न होने अपेक्षा करगिल बा। कृषि ज्ञान केन्द्र का अनुसार यी वर्ष दाङ में 34,723 हेक्टर क्षेत्रफल में धान रोपाई होने अनुमान करगिल बा। उमध्ये 33,390 हेक्टर अर्थात करीब 95% क्षेत्रफल में धान खेती होने प्रक्षेपण करगिल प्रमुख भण्डारी बटवा रखल। समय में जो रोपाई सम्पन्न हुईल से यी वर्ष धान उत्पादन के बढ़ सकने कृषि ज्ञान केन्द्र जना राखल।
को जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानसे जिल्लाको दुई सामुदायिक वन क्षेत्र स्थित व्यवहारिक व्यवस्थामा छ नाल अवैध भरूवा बन्दुक बरामद गरिराखल। प्रहरीका अनुसार वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका बाह्र स्थित भदासे सामुदायिक वन नमस्ते चार नाल ओ छत्रेश्वरी गाउँपालिका एक स्थित जुके खोला सामुदायिक वन नमस्ते दुई नाल कैकन छ नाल भरूवा बन्दुक बरामद गरिराख। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक देवराज भण्डारीको अनुसार नुकाकन धरलकना गोप्य सूचनाका आधारमा सञ्चालन करगिलक खोजतलास अभियानका क्रममा ऊ भरूवा बन्दुक फेला पर्ला खुइट। उहाँ से बरामद हुइल भरूवा बन्दुक के कस कहिया कैकन कुन प्रयोग प्रयोजनका लागि नुकाकन धरलको कना विषयमा अनुसन्धान हुइतिरलक बटुवा राख्ल। अवैध हात हतियारको प्रयोग तथा असार प्रसार नियन्त्रणका लागि जिल्लाभर प्रहरीको निगरानी तथा कोष तलास अभियान हान तीव्र बनागिलक प्रहरी जना राखल। प्रहरी निरीक्षक भण्डारीसे अवैध हात हतियारसे सम्बन्धित कौनो फे सूचना वा शंकास्पद गतिविधिबारे जानकारी हुलसे तत्काल लघुक प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिए सर्वसाधारणसे आग्रह गरिराख्ल। गुइठा ताजुक थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कासन ज्याफे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने भाटी अखसा खबर वंश समाचार कक्ष कसबको संग्रहसँग मैशालिग्राम चौधरी विदाहिटु रिरी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद करता सुई इंटरनेट पैकेज नया चलान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड

0: सुरक्षित जीवन जीन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: हीरा काटने हीरे मारा के।
2: नमस्ते, म रामकृष्ण रकाल। तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईको आफ्नै रेडियो, रेडियो मध्य पश्चिम 91.4 मेगाहर्ज।

0: हरि ओम। दुर्वृत्त वृत्त समनम तव देवी शीलम रूपम तथैतद् विचिन्तमतुल्यमन्ये वीर्यं च हन्त्रीर्तदेव पराक्रमाणां वैरी स्वपि प्रकटितैव दया त्वेत्थम्। हे पराप्रकृति, हे आद्याशक्ति जननी, तिमीले जीवन का सबै दुःखहरू हरण गर्छौ र भित्रको मलाई प्रकट गर्छौ। तिम्रो रूप नै यस्तो उज्यालो छ कि सही नियत भएको व्यक्तिले तिम्रो रूपमा आफूलाई हराउँछ, आफूलाई डुबाउँछ, र गलत नियत भएको व्यक्तिले तिमीलाई हेर्न पनि सक्दैन। तिमी त्यस्तो विराट र सर्वशक्तिशाली छौ। त्यस्तै जगत जननी दुर्गा माताका चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत। हाम्रो जीवन आफैले निर्माण गरेको एउटा अध्याय हो, आफैले लेखेको कथामा आफैले अभिनय गरिरहेका छौँ हामी। कथाको लेखक आफै, कथा लेखियो, त्यसपछि चाहिँ कथा राखियो, अभिनय शुरू भयो, अभिनय शुरू गर्दा कथा कोले बनाएको बिर्सियो, यो बिर्सियो कि कथा स्वयंले लेखेको, आफ्नो कथा थियो, त्यो कथाको लेखक निर्माता म स्वयं थिएँ, त्यो बिर्सियो। र अहिले यो कथाका लागि सबैलाई दोष दिन प्रारम्भ गरियो, कस्तो गलत अभिनय गर्न म बाध्य छु, ओहो कस्तो गलत काम गरिरहेछु, कस्तो दुःख पाइरहेछु, यो कि जुन कुरा गर्नै नपर्ने त्यो कुरा गरेर बसिरहेछु, यस्ता प्रकारका गुनासाहरू मनमा जन्मिए। किनभने नि कथा लेख्ने व्यक्ति जुन छ त्यो बेहोस छ, कथा उसले लेख्छ मनको कथा, मनको कथा जस्तो लेख्छ जीवनमा त्यही अभिनय आउँछ, उसले बिर्सियो, ऊ बेहोस थियो क्या, होसमा लेखेको थिएन। होसमा लेखेको भएन सम्झिने हो, सपनामा लेखेको थियो कथा, सपना जस्तै अर्धचेतन अवस्थामा कथा लेखेको थियो, र अभिनय पनि अर्धचेतन अवस्थामै गरिरहेको छ, त्यसकारणले उसले बिर्सियो। मानव जीवनको कथाको स्रष्टा म स्वयं हुँ भन्ने बुझ्नु परम मुक्ति हो। मुक्ति किन हो भने मैले लेखेको कथा हो नि, त म फरक प्रकारको कथा लेख्न सक्छु भविष्यलाई अब, र कथा न हो मैले गरेको अभिनय हो, योभन्दा पृथक अभिनय पनि त गर्न सक्छु नि, कथा परिवर्तन गर्न सक्छु र कथाले मागे अनुसारको अभिनय आफै परिवर्तन हुन्छ। अहिलेसम्म म विलेनको नकारात्मक भूमिकामा म सीमित भए होला, त्यसमा मलाई त्यस्तो लाग्यो होला, तर त्यो भूमिका पनि मैले आफैले रोजेको, आफैले लेखेको कथामा आफैले गरेको भूमिका हो। यो बुझ्नु कति ठूलो मुक्ति, पुरानो कथा तोड्नु नै मानव जीवनको लक्ष्य हो। पुरानो कथाले हामीलाई बार बार दुःखमा लगेको छ। मानिसहरू अध्यात्ममा आउँछन्, धेरै कुरा बदल्न चाहन्छन्, लुगा पनि बदल्छन्, दाढी कपाल पनि बदल्छन्, टीका पनि बदल्छन्, लगाउने वस्त्र बदल्छन्, माला बदल्छन्, तर आफूलाई चाहिँ बदल्दैन। आफूलाई नबदलिकन, यानि आफू बदल्नु यानि आदत बदल्नु, आदत नबदलिकन पुरानो कुरो कसरी टुट्छ के? तपाईँभित्र एक प्रकारको मानिस छ जुन छ, बाहिरबाट लुगा अलग लगाइदिनु भयो कि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, बाहिरबाट टीका फरक प्रकारको लगाइदिनु भयो कि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म रुद्राक्षको माला लगाउनु भएको थियो, अब अलिक फरक प्रकारको माला लगाउनु भयो, तपाईँले तुलसीको माला लगाउनु भयो वा क्रिस्टलको लगाउनु भयो, के त्यसले तपाईँ नयाँ भन्नुहुन्छ? पुरानो जुन प्रोग्राम छ, कथा छ, त्यो प्रोग्रामिङ हो नि, आफैले आफ्नो ब्रेनलाई प्रोग्रामिङ गरेको, मस्तिष्कलाई, त्यो पुरानो कथालाई ब्रेक गर्नु छ, तोड्नु छ पुरानो कथालाई। पुरानो कथालाई नतोडिकन जीवनमा परिवर्तन आउँदैन, र बाहिर केही तोड्ने प्रयास नगर्नुहोस्, भित्र तोड्नुपर्छ। बाहिर तोड्ने प्रयासमा जीवनका समयहरू खेर जान्छन्, भित्र तोड्नु छ नयाँ कथाको निर्माण। किनभने नयाँ कथा निर्माण नगरिकन केही उपाय नै छैन, जीवनको कुनै पनि कुरा बदलिँदैन, कथा बदल्नुपर्छ अनि जीवन बदलिन्छ, कथा बदल्नुपर्छ। ब्रेक फ्रम द पास्ट। अहिले हामी अमेरिकाको मेरिल्यान्ड राज्यको बल्टिमोरमा छौं, यहाँ चक्र विज्ञान भइरहेको छ, आज पाँचौं दिन हो। यो पुरानो कथालाई एकपटक बदल्ने अभ्यास हो। पुरानो कथालाई नतोडिकन नयाँ कथा लेख्न सक्नुहुन्न, तपाईँ पुरानै कथा समातेर बसिराख्नुहुन्छ। नयाँ कथा तपाईँलाई प्रवचन जस्तै लाग्छ, नयाँ कथा कुनै गहिरो हो जस्तो लाग्दैन, नयाँ कथा तपाईँको मनमा जाँदैन, पुरानै कथा समातेर बसिराख्नुहुन्छ। जो सहभागीहरू हुनुहुन्छ, हामी मदद गरिरहेछौ कि उहाँहरूले आफ्नो कथा तोड्नुहोस्, किनभने यो पूरै देश नै कथा तोड्नेहरूको देश हो। यति सृजनशीलता छ, जताततै यति नयाँपन छ, মানুষের এটি নয়া ঢঙ্গলে সোচ্ছেন, এটি নয়া প্রকার কাম করছেন। ইয় বর্ষ এক বর্ষ তিন পটক আইসে আমেরিকা, তিনই পটক নয়া দেখি রাখছ। তো নয়া দেখা লাগি ম সড়ক হেদিন, নয়া দেখা লাগি মহাকা পুস্তক পড়ছ, নয়া নিকালে পুস্তক হরেক তিন তিন মহিনা নয়া বিচার জন্ম দিই রেখেছ, নয়া সোচ, নয়া বাটো পত্তা লগাই, নয়া সমাধান, নয়া দৃষ্টি। আমি দঙ্গ ছ আমরা প্রশিক্ষকরা দেখে জীবন বিজ্ঞান কা মিত্র দেখে উহারে কে নয়া গড়ি রাখবে, কিনবনে পুরানো কথালাই নতোড়িকন নয়া কথা বন্দেন। পুরানো কথা তোড়নে নয়া কথা লেখনে সাহস নেই মানব জীবন। প্রশিক্ষক আমি হেছ ধরেই প্রশিক্ষক কে নবীনতা লই সক্নুভাবে হরেক পটক নবীনতা খোঁজছ। হেন বিহানক সূর্যোদয় হেন কুনে সূর্যোদয় মিলে বিজ্ঞান বলছ কি সূর্য এসরি উদাউন থালে চার অরব বর্ষ ভাগ বড়ি ভো, তর আজসম কূর্যোদয় কূর্যোদয় মিলে কস্ত অচম্ম। প্রকৃতি পরমাত্মা পুরানো করেন জাঁদ নিরন্তর নয়া করছে, নিরন্তর নয়া বনছ। তর মানুষ পুরানো অড়কি হিজো কোলে গালি গো, অস্তি কে কুরা মন পর্য, কাম হারে কাহ অসফল ভয়, তেই সমাতে বসে পুরানো সমাতে বসে উসলে মানু এই ঠুল সম্পত্তি সমাতে বসে তে অসফলতা কথা সম্পত্তি হইন। সম্পত্তি তো অব ম যে গর্ন সকছু ত্যাঁবাট যাবে, বাইরে ইয়া কমা সম্পত্তি ইয়াই ছোড়ে জানু পর্ তো এটা নয়া করলে নয়া সোচনে তরিকা যুন তো নই অসলি সম্পত্তি হো সৃজনশীলতা ক্রিয়েটিভিটি অঙ্গ্রেজী ভাই আউট অফ দি বক্স থিঙ্কিং তো সম্পত্তি হো। মানে মে জীবন পুরানো কথা কসরি তোড়ন সকছু, নয়া কসরি লেখন সকছু। অর্জুন লাই ভগবান কৃষ্ণলে তেই ভন্নু, অর্জুনলে পুরানে শাস্ত্র পড়ে গফ দিয়ে কি এস্তো হচ্ছে উস্তো হচ্ছে, মরে ভেন ইলে পিণ্ড পানি পাউদেন, পিণ্ড পানি নপায়ে পেছি পুরে বনশঙ্কর জন্মিছে, পুরানা গফ দিয়ে অর্জুন ভগবান ভন্ন চুপ বেকুফ মানুষ নয়া আজ জন্মে আছে গফ পুরানো দিচ্ছে তো কথা খালি পুরানো তো জীবন কসলে ভ কর্ম ছোড়ে জানু পর্ছ, কসলে ভ কর্মলাই বন্ধ করু পর্ছ, কাবার সিকিস ক্লেবে পার্থ নৈতত্ব উপপদ্ধতি ছুদ্রম হৃদয় দৌর্বল্যম ত্যক্তোত্তষ্ট পরম তপা বড়ো কুনে প্রাণ নভে জস্তো ব্যক্তি কুরা কিনে করছ তাইলে কাবার সিকিস অর্জুন কমজোরী মন কমজোর তাইলে কইলে দেখি বনাইস বাবু। তো ভগবান কৃষ্ণলে কি করুন অর্জুন পুরানো কথা তোড় দিন, নয়া কথা হাল দিন, পুরানো কুরো টুট্য পুরে গীতা তে পুরানো তোড় নয়া ঢঙ্গলে জীবনলাই হের পুরানাই কথা হ্যাঁ দেশ দেশ পুরানাই কথা আজ ভাগ 100 বর্ষ আগাড়ি তাইলে মানে এস্তো গ্যাথিস মেরো এস্তো ফলানো এস্তো গ্যাথি তী কথা আড়কে আছেন সবাই। নয়া কথা লেখনে হিম্মত আয়ো নি শান্তি তো নয়া কথা কি হতো আমি সব এক হো নি নয়া কথা তো দেশ কুরা না করো ব্যক্তি কুরা জমা বে মানব জীবন অদ্ভুত আপনি লেখক কথা পুরানো মনলে পুরানাই কথা লেখি রাখ অসফলতা বানী লাগে মনলে অসফলতাকে কথা লেখি রাখ ঝগড়া কর বানী লাগে মনলে ঝগড়াকে কথা লেখি রাখ উল্লে কথা নয়া লেখন জাঁদেন তেসকারণে দৈনিক জীবন আপুলা ছুট্টিয়াউনু পর্ছ অলগ করু পর্ছ সব কুরা ছোড়ে ধ্যান বস কে বিবিক্ত দেশ সেবিত্ব আর জনসংসদি কসাই নভেট কে সময় অলগ বস কিন পুরানো মানুষ পুরানো কথা ভাই রেখে কে তুমি জো জলা ভেট উল্লে পুরানাই কথা শুনাই রেখে ছোড়া তি পুরানা কথা তিমরা পত্র পত্রিকা তিমরা সমাচার তিমরা সামাজিক সঞ্জাল তে পুরানা কথালে ভরিয়া তিনলাই ব্রহ্মাণ্ড কে হো পরমাত্মা কে হো প্রকৃতি কসরি চলছ পরমাত্মা কসরি চলছ এ বিষয় সপনা পনি আউদিন তো নয়া কথা লেখনে থে কসরি একদম পুরানো প্রতিস্পর্ধা কথা অরুসঙ্গ লড়াই গরে ভনে মাত্রে ঠুলো ভাইছ ভন্নে কথা প্রত্যেক ব্যক্তি ভ্রষ্টাচারী নেই হুন্ছ ভন্নে কথা প্রত্যেক ব্যক্তি ভিতর চোর ডাকু মাত্রে লুকেকো ছ ভন্নে কথা কতি পুরানা কথা ঠিক সঙ্গে হেরে ভনে প্রত্যেক ব্যক্তি ভিতর ঈশ্বর লুকেকো ছ তুই চি দেখবে না তো পুরানো কথালাই তোড়ন আমিলে বিশ্বভরি রেখেকা আমরা নেপালীহরুলাই অরুলাই মদত গর্নুপর্ছ।
1: दाँत गिजत छ मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा हरेक दिन अब घुराईमै।
2: त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमडीएस गर्नुभएका वरिष्ठ डेन्टल कन्सल्टेन्ट अर्थोडेन्टिस्ट डाक्टर चेतनारायण पाण्डेद्वारा बाङ्गोटिङ्गो छिचरो भएको उछुटिएको र नमिलेको दाँतको सफल उपचार भइरहेको कुरा जानकारी गराउँदछौ। साथै यस डेन्टल क्लिनिकमा दाँत मुख तथा गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार भइरहेको छ।
3: डाक्टरद्वारा दिइने सेवाहरू
4: दाँत मुख तथा अनुहारको शल्य चिकित्सा सेवा,
3: अनुहारका हड्डी भाँचिएको जोड्ने,
4: दाँतको एक्सरे सेवा,
3: सामान्य तथा जटिल दाँत निकाल्ने,
4: फिक्स तथा झिक्न मिल्ने नक्कली दाँत राख्ने सुविधा,
3: अत्याधुनिक मेसिनद्वारा दाँतको सफाई,
4: मेसिनबाट जरेदेखि दाँत फरिने,
3: दाँतको पोस्ट तथा कोल प्रविधिद्वारा उपचार,
4: किराले खाएको दाँतको विभिन्न पद्धतिद्वारा उपचार,
3: बालबालिकाको दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार।
4: साथै
2: वरिष्ठ डेन्टल कन्सल्टेन्ट अर्थोडेन्टिस्ट डाक्टर चेतनारायण पाण्डेद्वारा दैनिक रूपमा
4: बाङ्गोटिङ्गो दाँत तार बाँधेर मिलाउने सुविधा पनि छ।
5: सम्पर्क डी नोभा डेन्टल क्लिनिक, ट्राफिक रोड घोराही दाङ, दीपज्योति अस्पतालको 20 मिटर माथि। फोन 082562707।
6: के तपाईँ दाँत तथा गिजा सम्बन्धी कुनै पनि समस्याबाट पीड़ित हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने दाङ घोराई न्यू रोड स्थित गणेश चित्रालयको अगाडि रहेको डायनामिक डेन्टल क्लिनिकमा विगत लामो समयदेखि काम गरी अनुभव सँगाल्नु भएका सिनियर डेन्टल सर्जन डाक्टर रश्मिता बस्नेत र सिनियर डेन्टल सर्जन डाक्टर रञ्जना खनालद्वारा सेवा दिँदै आइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ।
7: किराले खाएको दाँत निकाल्ने,
8: शल्यक्रिया गरेर जटिल दाँतहरू निकाल्ने,
7: खाली ठाउँमा दाँत राख्ने,
8: दाँतको जरैदेखि उपचार गर्ने,
7: भएको दाँतमा खुलो राख्ने, दाँत सफा गर्ने, तार बाँध्ने, दाँत र गिजा सम्बन्धी मुखभित्रको सबै रोगको उपचार सेवा,
8: लेजर विधिद्वारा किराले खाएको दाँतमा सिमेन्ट भरिनुका साथै चाँदी र सिसा पनि भरिन्छ।
9: सम्पर्क डायनामिक डेन्टल क्लिनिक घोराई न्यू रोड गणेश चित्रालयको अगाडि।
10: सम्पर्क फोन नम्बर 082590 4666 98 29 81 50 53।